0: அப்படிங்கறத ஸ்பாட்ல தான் கேட்பேன். ஓகேவா? கால் பண்ணுங்க எஃப்எம் ரெயின்போக்கு.
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 102.8 இசையோடு என்றும் நீங்கள்.